0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The 12th BRICS Environment Ministers meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The meeting serves as a platform for ministers, senior officers, policymakers and experts from the member countries to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, is presiding over the meeting. The theme of India's BRICS Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The Jharkhand government has cancelled the JSSC-CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. However, the demand of protesters for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government announced a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at several locations in Karnataka linked to alleged Karnataka Public Service Commission KPSC paper leak scam. Former chairman of KPSC Shiv Shankarappa Esahukar is accused of examination paper leaks, tampering with OMR sheets and demanding bribes ranging from 70 to 80 lakhs per candidate to recruit government veterinary officers. It is also alleged that a private company acted as a middleman. In this background, ED conducted searches at the residence of Shiv Shankarappa and a few former members of KPSC and officers linked to a private company. The investigation is related to irregularities and possible involvement of people connected with the corrupt recruitment process. In Jammu and Kashmir, security forces today launched search operations at several locations in Udhampur, Riyasi and Kathua districts following reports of the movement of suspected individuals. Additionally, security forces conducted search operations in the Sadini forests in Riyasi and in several villages near the international border in the Hiranagar sector of Kathua. These operations are ongoing in all areas and more details are awaited. Meanwhile, General Officer Commanding-in-Chief of Northern Command, Lieutenant General Pratik Sharma, visited forward areas along the line of control in Poonch district yesterday. During the visit, he stressed the need for continued vigilance and innovative approaches to effectively address emerging security challenges. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has rejected US President Donald Trump's claim that Washington has a back channel for talks with the Iranian force. IRGC spokesperson Hossein Mohabi described the claim as a delusion and said there is no dialogue between IRGC officials and the United States. Mr. Mohabi also said Iran's diplomatic apparatus is not currently engaged in negotiations with Washington, citing what he called the US breach of its promises. U.S. President Donald Trump has praised India's voter ID card system and hailed it as a model for stricter U.S. election rules. He cited India's electoral system as an example of election security while renewing his call for stricter voter identification requirements in the United States. In a social media post, Trump referred to a recent conversation with India's Chief Election Commissioner Ganesh Kumar. He said Mr. Kumar had questioned how elections could be held in the United States without a mandatory valid photo identity document. India's Ayush Shetty stunned world number one in defending champion.

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम है 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। सैनिक भाइयों, मैं अमित बांसकोटा आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के प्रसारण में।

सैनिक भाइयों, आपसे कुछ ही पलों में हम प्रारंभ करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर। पर उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। 12:30 पर आप सुन पाएंगे आज का गीत। 12:38 पर गीत अपना धुन पर आए।

सैनिक भाइयों, 1:05 पर आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर एक ही फिल्म के गीत, 1:40 पर आप सुन पाएंगे शीर्षक संगीत कार्यक्रम।

2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, और 2:30 पर आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। और इसी के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है जाने मन फिल्म से, सोनू निगम और साधना सरगम की युगल आवाजों में। आइए सुनते हैं ये गीत।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

सैनिक भाइयों, फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, जाने मन फिल्म से सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं तुम मिले फिल्म से गीत, के की आवाज में।

सनी भाइयों, फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान की युगल आवाजों में संजू फिल्म से।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं आज का गीत। आज हमने लिया है फना फिल्म से ये गीत, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। आइए सुनते हैं ये गीत।

हमेशा की तरह कल भी हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ होगा दोपहर 12:10 से। 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी नगमे और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

सनी भाइयों, 1:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम तरंग, 1:40 पर प्रादेशिक संगीत, 2:00 से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, 2:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी। इसी के साथ 2:03 समाप्त होगा हमारा कल का प्रसारण। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं गीत अपना धुन पर आए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से आशा भोसले की आवाज में। आइए सुनते हैं गीत।

सनिक भाई, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए। और अभी आपने सुना हरे राम हरे कृष्ण फिल्म से गीत आशा भोसले की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं दो कलिया फिल्म से। ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

0: जा, क्यों नहीं आती, आजा okay.
1: आजा
0: आजा
1: मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आइए अब सुनते हैं जमाना दीवाना फिल्म से ये गीत।

गीत अपना धुन पर आए कार्यक्रम का आइए अब सुनते हैं अंतिम गीत मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म से अलीशा चिनोय और सोनू निगम की आवाज़ों में।

इसी गीत के साथ ही गीत अपना धुन पर आए कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब 1:05 में सुनिए अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे मीडियम एफ 529.1 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। सरहद की बर्फीली चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तान तक दिन रात देश की रक्षा में जुटे हमारे सभी सैनिक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत में। सैनिक भाइयों, हम जानते हैं अपनों से दूर वतन के फर्श के बीच जब दिन गुजर रहे होते हैं तो दिल में यादों के कई खूबसूरत तराने आपके दिलों में भी गूंजने लगते होंगे। इसीलिए आपके दिल को थोड़ा सुकून और अपनों का एहसास देने के लिए आज हम लेकर आए हैं साल 2001 की एक बेहद खास और यादगार फिल्म कसूर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं इस फिल्म का बेहद ही सुंदर ये गीत।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में ये बहुत ही सुंदर गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत और आज आप सुन रहे हैं फिल्म कसूर के कुछ चुनिंदा गीत। विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर थी जिसमें आफताब शिवदासानी और लीजा रे मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म की कहानी एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री और कोर्ट कचहरी के दांवपेच के इर्द गिर्द घूमती है, जहां शेखर सक्सेना नाम के पत्रकार पर अपनी ही पत्नी के कत्ल का इल्जाम लगता है। रहस्य, रोमांच और जज्बातों से भरी इस कहानी को पर्दे पर कलाकारों ने पूरी शिद्दत के साथ जिया था।

सनिक भाई, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत, और आज आप सुन रहे हैं फिल्म कसूर के कुछ चुनिंदा गीत। इस फिल्म के सिनेमा के इतिहास में जिस चीज़ ने हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया, वह था इसका रूह को छू देने वाला संगीत। नदीम श्रवण की संगीतकार जोड़ी ने इस फिल्म के लिए ऐसी धुनें तैयार की जो सीधे दिल में उतर जाती हैं। समीर के लिखे एक एक लफ्ज में मोहब्बत, जुदाई और मिलने की तड़प को बेहद सादगी से पिरोया गया, जो आज भी कानों में मिश्री की तरह घोल देती है।

सैनिक भाई, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत, और आज आप सुन रहे हैं फिल्म कसूर के कुछ चुनिंदा गीत। कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे दिग्गज गायकों की मखमली आवाजों में सजे इस फिल्म के गीतों ने 2000 के दशक की शुरुआत में हर रेडियो स्टेशन और हर दिल पर राज किया था। चाहे अपनों से दूर होने का दर्द हो या फिर उनसे मिलने की बेताबी, इस फिल्म का हर एक सुर सीधे दिल की बात कहता था। सीमा पर तैनात हमारे सभी फौजी भाइयों, देश का हर नागरिक आपकी जाबाजी और कुर्बानियों पर गर्व करता है। उम्मीद है कसूर फिल्म के खूबसूरत तराने आपके इस पल को कुछ हसीन और सुकून भरी यादों से जरूर भर देंगे। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिष्पुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं शीर्षक संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं।

सैनिक भाइयों, शीर्षक संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे हुजूर फिल्म से। अब आइए सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म से गीत एस टी वर्मन की आवाज़ में।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना फिल्म दुनिया से ये गीत मुकेश और शारदा की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं शीर्षक संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मन्ना दे की आवाज में, दर्पण झूठ ना बोले फिल्म से।

0: इस गीत के साथ ही शीर्षक संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, अभी दिन के 2 बजने को है। 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. 12th BRICS Environment Ministers meeting began in New Delhi to foster consensus on environmental cooperation. BJP appoints new state in charge.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन

0: निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिये, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जैसे डीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी

0: योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैयागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्टास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद सैनिक भाइयों, आप सभी का हमारे इस प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है।

जतिशपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन।

सैनिक भाइयों, गुंजन कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, चश्मे वदूर फिल्म से हेमंती की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं अभिजीत की आवाज़ में ये गीत, यस बॉस फिल्म से।

सैनिक भाई, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन। और अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म था ब्लैकमेल। अब आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, कांटे, फिल्म से ये गीत।

0: सनी भाई, गुंजन कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आइए सुनते हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में, सीता और गीता फिल्म से।
1: अरे अरे ए ए ए ए, ए!

इसी के साथ यह कार्यक्रम गुंजन यहीं पर समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए हमारा आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अमित बांसकोटा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: एक चोट, एक हादसा और जिंदगी बदल सकती है, लेकिन सही फर्स्ट एड से जिंदगी फिर से संभल सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। दुर्घटना कभी बताकर नहीं आती, लेकिन सही समय पर दी गई फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा किसी की जान बचाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। घटना के बाद के शुरुआती कुछ मिनट कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाते हैं। यही विषय हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर।

0: आज हम जानेंगे कि गंभीर चोट की स्थिति में क्या करें, क्या ना करें और मरीज को सुरक्षित तरीके से अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन महेश्वरी, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर क्या है और दोनों में क्या अंतर है।
1: जी, जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, प्राथमिक जो केयर होता है, वो जो आपके जो जब आपको चोट लगती है या कोई भी आपदा आती है या कोई भी आपको इंजरी होती है, तो उसमें जो आपको जो फर्स्ट जो रिस्पांस होता है, जो बाईस्टैंडर वहाँ पे जो मौजूद होते हैं वो देते हैं, है ना। और ट्रॉमा केयर होता है, तो जैसे कि मान लो अब अगर ट्रॉमा नहीं भी है, जैसे मान लो स्नेक बाइट हो गया, है ना, या बर्न हो गया, तो वो मतलब वहाँ पे जो फर्स्ट एड होगा, वो जो प्राथमिक चिकित्सा होगी, वो आपको फर्स्ट एड के नाम से खिलाया जाएगा। वेयर इज ट्रॉमा केयर इज टोटली डिफरेंट, अलग से वो है, जिसमें कि खास करके जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं या ऊंचाई से गिरना होता है या अन्य जो ट्रॉमा कंडीशंस होते हैं, जिसमें आपको प्राथमिक उपचार जो होता है वो आपको जो केयर होती है उसको अलग से कहा जाता है।
0: डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो हमें फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या करना चाहिए।
2: देखिए, फर्स्ट एड की हम बात करें, जनरली फर्स्ट एड को हम यानी छोटी इंजरी में कंसीडर करते हैं। ट्रॉमा केयर हमारे जो एक्सीडेंटल केसेस, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इसे मेजर एक्सीडेंट या स्नेक बाइट बर्न के केसेस हैं, इस टाइप के केसेस में यूज़ करते हैं इनको फर्स्ट एड में। सपोज जैसे कि हमारा कोई पैर, हम चल रहे हैं, पैर में हमारी स्प्रेन आ गया, तो उस केस में हमें बेसिक हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हमारे जैसे रेस्ट करना चाहिए, आइस कंप्रेशन देना चाहिए और लिम्ब एलिवेशन करना चाहिए। और अगर कोई हमारा सपोज हमारा ट्रॉमा के एक्सीडेंटल केसेस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट है, वहाँ पे उस केसेस के लिए सबसे पहला जो लेटेस्ट गाइडलाइन में आजकल है, हमें उसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो उसको रोकना चाहिए, और उसके बाद फिर हमारा जो एयर वे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इसको मेंटेन करके रखना चाहिए।
0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होए। चोट किसी को भी लगे, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया, लेकिन देख के दर्द तो होता ही है और बाद में कुछ देर तक हमारे शायद जहन में भी रहता है। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर। तो डॉक्टर साहब, हम संजय से जानना चाहेंगे कि अगर किसी को चोट लगे तो इमिडिएटली हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, ट्रॉमा जो है उसमें देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा इंजरी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या हल्की सी चोट है, जैसे आप फिसल गए, सीढ़ी पे गिर गए, थोड़ी बहुत चोट लगी है। तो पहले तो सीन सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप जहाँ पे हैं कि कहीं आप उसको बचाने जा रहे हैं, किसी को मान लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है उसको बचाने जा रहे हैं, तो कहीं आप अपने आप को डेंजर में तो नहीं डाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि

0: वहाँ पे मान लो स्पिल हो रखा है, पेट्रोल डीजल आग छोटी सी लगी हुई है, उसमें ऐसे कंडीशन में बड़ा डेंजरस हो सकता है, या व्हीकल एक टेढ़ी सी व्हीकल जो है जो उल्टी पड़ी हुई है उसमें आप जा रहे हैं किसी को निकालने, तो वो व्हीकल पूरी टेढ़ी हो सकती है, आपके ऊपर भी गिर सकती है। तो सीन सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप अपने आप को बचाते हुए उसको, उसके बाद जो आता है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लीडिंग आप उसमें देखिए, पहले ABC होता है, उससे पहले आपका ब्लीडिंग कहीं मेजर ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है तो पहले पेशेंट को एसेस करना है। तो पहले पेशेंट को एसेस करेंगे तो एयरवे देखते हैं कि भाई वो कहीं सांस ले रहा है कि नहीं, या उसके एयरवे पेटेंट हैं कि नहीं, और दूसरा ब्रीदिंग है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, और तीसरा होता है सर्कुलेशन कि यानी कि वो उसकी पल्स, या तो कई बार क्या होता है पल्स लोग नहीं जान पाते हैं कि पल्स कैसे देखना है। तो अगर लेकिन अगर वो कॉन्शियस है, बातें कर रहा है और सांस ले रहा है तो हम समझ लेते हैं कि कोई मेजर वो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिर हम देखते हैं कि कहाँ से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उसको हमें रोकना, तुरंत उसको रोकना जरूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट।
1: जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि अगर रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो जब होता है और जब तक हम उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसके बीच में अगर कोई आसपास है तो उन्हें क्या करना चाहिए?
2: हाँ, जैसे अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो रहा है और उसको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें सबसे पहले उसको बाइंड, हमारे पास कोई भी कपड़ा हो उसे टॉर्निकेट कहते हैं, उसके ऊपर जिस जगह चोट लगी है उसके ऊपर उसको बांध देना चाहिए, तो उस जगह की सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी, इससे वहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस कुछ कम हो जाएंगे। और अगर हमारा वुंड है, मतलब कि घाव अगर गहरा है, कोई हमारे पास साफ कपड़ा है अगर उस समय, तो उसमें से घाव से ब्लीडिंग हो रही तो उस कपड़े से हमें उसको ढक देना चाहिए और उसमें दबाव प्रेशर दे के रखना चाहिए जिस जगह ब्लीडिंग पॉइंट अगर हमें दिख रहा है। सपोज कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि जिसमें हड्डी टूटी हो और वहाँ से अगर धमनी से ब्लड का रक्त स्राव हो रहा हो, स्पर्ट जिसे कहते हैं, तो उस पर कंप्रेशन दे के या अपने साफ कपड़े से या हाथ से किसी भी तरीके से उस पर कंप्रेशन दे के रखना चाहिए, तो इससे ब्लीडिंग के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं जब तक कि हमको जैसे एडवांस फैसिलिटीज प्रोवाइड ना हो जाए उसमें, और इमिडिएटली उसको नियर बाय हॉस्पिटल में पहुँचाना चाहिए।
1: कई बार होता है कि कोई बेहोश हो जाए तो उसमें हमेशा ही एक माइंड में रहता है कि उनको पानी पिलाएं या नहीं पिलाएं, तो क्या करना चाहिए डॉक्टर संजय?
0: हाँ जी, अगर कोई बेहोश है तो ऑब्वियसली वो चीज़ को पानी को घुटक नहीं सकता है ना, वो उसके कफ रिफ्लेक्सेस भी नहीं है, घटक नहीं सकता, तो उसके मुंह में पानी डालेंगे तो वो चांसेस हैं कि उसके लंग्स में जाने के और उसको नुकसान करने का। ऐसे कंडीशन में तो कतई उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, है ना, उससे और उसको नुकसान हो सकता है।
1: और किसी की अगर हेड इंजरी हो या इस तरह से हो तो तब क्या करें, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
2: बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर किसी को हेड इंजरी हो, इसमें इंजरी कई तरीके की हो सकती है, कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं हेड इंजरी में कि हमें ऊपर से दिखती है कि ऊपर से घाव दिख रहा है, ब्लड हमें दिख रहा है कभी, और कभी कभी इंजरी ऐसी होती है कि सपोज जैसे स्कूटी से जा रहे हैं, स्कूटी से अचानक स्पीड ब्रेकर आया, हम गिर गए, इसमें क्या होता है कभी कभी इंजरी ऊपर से नहीं दिखती है लेकिन अंदर, जिसे हम लोग कंट्यूजन या काउंटर कूप इंजरी कहते हैं, वो हो जाती है। इस केस में हमें पेशेंट को या विक्टिम जो स्टेबलाइज करके और अगर सर्वाइकल इंजरी, इसमें स्पाइनल इंजरी का बहुत खतरा होता है, सर्वाइकल इंजरी अगर इसमें इंजरी हो जाती है, अगर ध्यान नहीं दिया तो इसमें हमारे हाथ पैर में लकवा पैरालिसिस कह सकते हैं, कॉर्डी पैरालिसिस हो सकता है, इसलिए इमिडिएटली कोई भी रोड साइड हेड इंजरी है हमें उसको सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करना चाहिए और इमिडिएटली उसको किसी अस्पताल पर ले जाना चाहिए उसको।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है।
0: इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे रोड साइड जैसे हेलमेट पहना हुआ है तो सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हेलमेट निकालने की कोशिश करते हैं, तो हर हमेशा ऐसा करना जरूरी नहीं होता है, पहले आप व्यक्ति से बात करें, अगर वो कॉन्शियस है, सांस ले रहा है, और कई बार क्या होता है कि हेड इंजरी हुई है ना, साथ साथ में नेक इंजरी भी है, उसमें हेलमेट निकालना थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे में अगर आपको जैसे मान लो अगर वो सांस नहीं ले रहा है, या आपको CPR करना है, या आपको असेसमेंट करना है कि वो मतलब वो अनकॉन्शियस पड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में हेलमेट निकालना जरूरी होता है, लेकिन हर केस में ये जरूरी नहीं होता।
1: जैसे कि आपने अभी CPR के बारे में कहा, तो CPR क्या है?
0: हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप वैसे तो सभी को आना चाहिए ये CPR, बेसिक जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, सांस नहीं ले रहा है और उसकी जो हार्ट रुक गया है, तो ऐसे कंडीशन में चेस्ट कंप्रेशन देना होता है।

0: है, तो उसमें हम जो बिल्कुल आपका जो छाती का बीच का हिस्सा होता है उसमें हम अपने जो जो पाम का जो हील होता है उससे हम इसको कंप्रेशन देते हैं और इसको 100 से 120 बार हम कंप्रेस करते हैं, उसको पूरा रिकॉइल होने देते हैं। 5 से 6 सेंटीमीटर का दबाव आना चाहिए उसमें, और बीच बीच में हमें रेस्क्यू, अगर ब्रीदिंग नहीं कर रहा तो रेस्क्यू ब्रेथ्स भी देना होता है 30:2 उसमें रेशियो में, 30 बार कंप्रेशन फिर 2 बार ब्रेथ्स। इसको हम CPR करते हैं जब तक कि हमारे पास प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं आ जाता है या एम्बुलेंस नहीं आ जाती है।
1: तो कब देनी चाहिए हमें CPR, किस कंडीशंस में? मतलब
0: जैसे कि अगर वो अनकॉन्शियस पड़ा है, सांस नहीं ले रहा है और वो उसका हार्ट, आपने पल्स फील किया, पल्स नहीं आ रही है, तो ऐसे में मान लेना चाहिए कि उसका हार्ट रुक गया है। और तो ऐसे कंडीशन में उसको हम तुरंत, अगर हम बिल्कुल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट किया, कहीं पे भी जो इंजरी हुई है वहाँ पे हम हैं, तो इसको तुरंत हमें स्टार्ट करना चाहिए।
1: तो कोई भी दे सकता है CPR?
0: कोई भी दे सकता है अगर उसने सीखा हुआ है तो। बहुत आसान है,
1: जैसा कि आपने हमें प्रोसीजर बताया किस तरीके से देते हैं। डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जैसे हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कहा था कि कई बार बर्न हो जाता है, कोई किचन में काम कर रहा है या घर में लग गई या कोई फैक्ट्री वगैरह में है, जल गया, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए?
2: बर्न की इंजरी में हमें सबसे पहले तो ये ग्रेडिंग में हो जाता है किस तरीके से, किससे हमें बर्न हुआ हो। सबसे पहले सीन सेफ्टी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमें अपने को सीन सेफ्टी उस जगह लेके आना है, अपने आप को सेफ रखना है, नंबर 1। दूसरा, इसमें कैटेगरी होती है बर्न की केसेस में, 1st degree, 2nd degree, 3rd degree, किस कैटेगरी का बर्न हुआ है। अगर 1st degree कैटेगरी का बर्न है सपोज, तो उसमें रेडनेस और स्वेलिंग हल्की सी होती है, ऊपर की स्किन की एक परत निकल जाती है इस पर हमें, और दूसरी कैटेगरी 2nd degree और 3rd degree, 3rd degree इज सो उसमें हमारा डीप बर्न के कारण इंजरी हो जाती है। इसमें 2nd degree में जो होता है पेनफुल बहुत हो जाता है इसमें, और ब्लिस्टर्स डेवलप होते हैं। इसमें पहला काम हमें करना चाहिए कि रनिंग वाटर में, कोल्ड रनिंग वाटर में उसको ठंडा करके, मतलब वॉश करते रहना चाहिए इसके, और कोई साफ कपड़े से उसके ऊपर एक कवरिंग कर देनी चाहिए ताकि इसमें रगड़ ना लगे इस तरीके से, और नियर बाय, और इसमें हाइड्रेशन का हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है ये, फिर इमिडिएटली हमें नियर बाय हॉस्पिटल जाकर उसको मैनेज करना चाहिए इसको, ठीक।
1: और अगर जैसे किसी के जैसे लग जाती है तो क्या हम कुछ क्रीम या वॉन्ट्स कुछ लग इमीडिएटली कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, सिल्वर एक्स क्रीम वगैरह जो हमारे बर्नॉल जो बेसिक हमारे घर में जनरली मिल जाती है उसको एक अप्लाई कर देना चाहिए उस पर उसको, बिल्कुल कर। और ठीक,
0: इसमें एक चीज रहता है कि कुछ लोग ना इसमें टूथपेस्ट लगा देते हैं, कुछ लोग ऑयल लगाते हैं, घी लगाते हैं, या फिर कई कुछ लोग तो मड लगा देते हैं। मैं मुझे याद है मैं जब लोकनायक हॉस्पिटल में था तो एक बच्चे को लेके आए उसके माँ बाप, और उसको जला हुआ था काफ़ी ज़्यादा, वो पानी से जल गया था, उसके ऊपर वो नमक लगा के लेके आए थे। तो कहते हैं ना कुछ जले हुए पे नमक लगाना, अब किसी ने उनको राय दी थी कि भाई जले पे नमक, तो वो इतना मतलब वो बच्चा बेहोश था उसमें। तो इस तरह की चीजें क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना है,
1: क्या नहीं करना। तो जलने के जैसे कई बार कहते हैं कि निशान नहीं जाते, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ली जाए तो क्या जले के निशान भी चले जाते हैं?
2: ये तो ट्रीटमेंट के बाद अगर हील हो जाता है उस पर डिपेंड करता है किस तरीके के निशान है। इसे केलॉइड कहते हैं, कभी कभी स्किन इकट्ठी हो जाती है, केलॉइड बन जाता है, तो वो बाद में अगर कॉस्मेटिकली अगर आप चाहें तो उसको सर्जिकल स्किन स्पेशलिस्ट से जाके करा सकते हैं। अदरवाइज अगर छोटे छोटे निशान होते हैं जलने के तो वो टाइम के साथ चले भी जाते हैं अगर हल्के निशान होते हैं तो। ये
1: जैसे कि हम रोड साइड एक्सीडेंट्स की भी बात कर रहे थे, तो अगर कई बार एक्सीडेंट्स होता है, किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो बाय द टाइम हम हॉस्पिटल पहुंचे तो और क्या क्या कर सकते हैं हम?
0: सबसे पहले देखिए, जो कोई भी ट्रॉमा में गुजरा है उसको पेन, एक कई बार बहुत सीवियर पेन हो रहा होता है, या फिर एंजाइटी बहुत होती है ना, घबराहट भी बहुत हो रही होती है, तो इसके वजह से भी ना ब्रीदिंग थोड़ा सा तेज हो जाती है ना, उसको ऐसा महसूस हो सकता है कि ब्रीदिंग उसको, अगर वो बात कर रहा है सही ढंग से है ना, सांस थोड़ा सा तेज हो सकती है, लेकिन अगर वो कॉन्शियस है, बात कर रहा है, कहीं स्लरिंग ऑफ स्पीच नहीं है, है ना उसको, या आंखों में देखने में कोई दिक्कत नहीं है, या कोई और जैसे कि वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसको हमें बहुत ज़्यादा मेजर अभी फिलहाल में कोई इंजरी नहीं है, और उसको हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
1: तो हॉस्पिटल ले जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: जी हाँ, उससे हम बात करते रहें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसको हम सोने ना दें, क्योंकि हमें अगर वो सोएगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि वो उसकी मेंटल स्टेटस क्या है। उसके पानी ना दें, उसको खाना ना दें, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इंजरी हमें दिख रही है

0: जैसे मान लो पैर टूट गया है तो उसको स्प्लिंट करके लेके जाएं, उसको बहुत ज़्यादा हिलाएं दुलाएं नहीं। और अगर कहीं ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग जैसे कि हमने बताया उसको प्रेशर बैंडेज करके उसके ऊपर हाथ रख के उसको कोई भी साफ कपड़े से उसको दबा के, और कई बार ये होता है कि जैसे मान लो एक पूरा रुमाल रखा हुआ है हमने और वो पूरा सोक हो गया ब्लड से, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा रुमाल लेके सोक्ड वाला रुमाल को फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो सोक्ड वाला रुमाल है जो उसी के ऊपर आप एक और साफ रुमाल रख के उसको प्रेशर बैंडेज दीजिए उसको, है ना। ऐसा नहीं है कि पहला वाला, तो वो प्रेशर से और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आप उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जा सकते हैं।
1: आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे?
2: हाँ बस ये ठीक है, बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने। बस इसमें कि जो बताया डॉक्टर साहब ने कि ब्लीडिंग पॉइंट है कैसे करना है, कोशिश करना चाहिए कि हमें अगर उसको लेटरल मतलब कि एक करवट की साइड जब भी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक करवट करा के लेके जाना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस किसी इंजरी के कारण या उसने खाना खाया हुआ है तुरंत उसने वोमिट कर दिया अगर, तो वो हम करवट करेंगे तो बाहर चला जाएगा, फेफड़े में नहीं जाएगा, तो ये हमारा एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं इसे, तो इससे हम बच सकते हैं और ये जानलेवा हो जाता है कभी कभी जो है।
0: एक चीज और है इसमें कि स्पाइन इंजरी का हमें ख्याल रखना चाहिए, है ना। ट्रॉमा में हमेशा हम लोग ज़्यादातर जो इसमें ट्रेंड नहीं होते हैं, बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो इस चीज़ का नहीं देखते हैं कि भाई अगर हेड इंजरी है, नेक इंजरी है, तो स्पाइन इंजरी हो सकती है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपको मूव नहीं करना है पेशेंट को, है ना। स्पाइन को स्टेबलाइज करते हुए उसको एक स्पाइन बोर्ड आता है, जब वो हॉस्पिटल वाले आते हैं या एम्बुलेंस वाले आते हैं तो स्पाइन बोर्ड के साथ वो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: ओम शांति।
1: ओम शांति, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा पूछना है कि इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट और बहुत पेन भी होता है, तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा क्या दी जाए?
1: जी डॉक्टर संजय
0: जी, देखिए स्नेक बाइट में क्या होता है कि ज्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नॉन पॉइजनस स्नेक के बाइट से भी आदमी मर सकता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो इसको डरने से वो शॉक में चला जाता है। तो ऐसे में सबसे जो बेसिक वो होता है कि आप उसको रीअश्योरेंस दें कि कुछ नहीं है, कि 90% जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, सिर्फ 4 स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। तो ऐसे अगर आप उनको बताएंगे कि 90% जो स्नेक्स होते हैं नॉन पॉइजनस, लैंड स्नेक्स जो होते हैं, ज़्यादातर सी स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, लेकिन जो लैंड स्नेक्स होते हैं ज़्यादातर 90% केसेस में वो नॉन पॉइजनस होते हैं। तो उनको रीअश्योरेंस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं कि कई लोग उसको जो बाइट जहाँ पे होता है उसको सक करते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है, या उस पर कुछ केमिकल लगाते हैं, या उसको चीरा मार देते हैं, या टॉर्निके भी बांध देते हैं, या और भी उपचार करते हैं, वो सब चीज़ नहीं करना होता है, है ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको वॉश कर सकते हैं सिंपल सोप एंड वाटर से, और उसको इमोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है ना, कि उसको ज़्यादा चला के नहीं लेके आए मरीज को, है ना, क्योंकि जितना चलेगा उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वो जो पॉइजन है वो फैलेगा। तो इसमें प्राथमिकता उपचार यही है कि रीअश्योरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो डरे नहीं, उसको बात करते रहें, उसको रीअश्योर करते रहें और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके आए।
1: आप डॉक्टर सचिन इस पर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे?
2: जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि उसको जो भी चीज़ें बताई वो ठीक है, प्राथमिकता पर उसको रखना चाहिए, और अगर कोई सपोज अगर हमारे पास कोई पॉइजनस स्नेक है उसके साइन सिम्टम हमें दिख रहे हैं किसी भी तरीके के, मसल्स वीकनेस या जो भी है, पर्सन बेहोश होता जा रहा है, उसके हाथ पैर में एकदम वीकनेस ही फील हो रही है, सांस में सांस नहीं आ रहा है, या हृदय की धड़कन हमारी कम हो रही है, अगर हम नब्ज़ पकड़ के देखते हैं इमीडिएटली अस्पताल में लेके जाते हैं उसको, एज़ पर सिम्टोमेटिकली एंटी स्नेक वेनम होता है वो ट्रीटमेंट का अस्पताल का पार्ट है, वहाँ पर तुरंत उसको दिया जाता है और वो उससे होपफुली रिकवर कर सकता है। ठीक है,
0: एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा कि जो स्नेक को ना कई बार क्या लोग ना उसको पकड़ने के लिए चेष्टा करते हैं, है ना, या उसको मारने के लिए, तो ये सब नहीं करें। ज्यादा से ज्यादा अगर फोटो खींच सके तो वो, है ना, वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय इसमें जाया ना करें कि उसको पकड़ के लेके आना जरूरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है।
1: लेकिन जैसा कि आजकल डॉक्टर साहब जंगल सफारी का बहुत ट्रेंड है, लोग जाते हैं सफारीज करते हैं, तो यूजुअली कई बार होता है मॉस्किटो बाइट हो जाती है, कई बार तो आईज में हो जाती है, तो आईज पूरी स्वलन हो जाती है, और मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाता, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम कैरी कर सकते हो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है स्नेक बाइट या मॉस्किटो बाइट तो हम इमीडिएटली कर सकें?

0: अगर सपोज हम ऐसी जगह जा रहे हैं, हमें डाउट है कुछ भी, तो इसके लिए हमें वैसे तो इंजेक्टेबल्स होते हैं, लेकिन ठीक है हमारे पास उस समय इंजेक्टेबल तो नहीं हो पाएंगे, हमें अपने उसमें एंटी एलर्जिक टैबलेट रख के ले जाना चाहिए जो हमारे कॉमन में भी, जो जुकाम में भी हमें फ़ायदा करती हैं, तो वो कहीं कुछ हद तक इसमें भी फ़ायदा कर सकती हैं। जब कभी स्नैक बाइट हो गए, कभी बी बाइट कर दिए, तो हम इमिडिएटली जैसे कि सिटीजिन मॉन्टेर वगैरह ये ले लेना चाहिए। तो इससे कुछ हद तक फ़ायदा मिल सकता है जब तक हम प्रॉपर उसकी सिचुएशन सुविधा ना ले सकें हॉस्पिटल।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो डॉक्टर साहब की ये तो हमने अपने में बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें हम कुछ घरेलू उपाय कर सकते हो?
2: किस चीज में?
1: अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है, हमें कोई अंदरूनी चोट लग गई है, तो हम यूजुअली घर पे ले गए तो खुद कुछ कर सकते हो, या सभी केसेस में हमें डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी
2: है? नहीं, सब में जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर मेजर ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, फ्रैक्चर आपको दिख रहा है कि टूटा हुआ टांग है, या वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है ना, वो पैर ही नहीं रख पा रहा है, सूजन बहुत ज़्यादा है ना, और ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सब कंडीशन में। और अच्छा, अगर हेड इंजरी है, बेहोश हो चुका है, कई बार एक बार बेहोश हो गया फिर होश में आ गया है ना, या दौरे पड़ गए, या बोल नहीं पा रहा है, या लड़खड़ा रहा है बोलने में, या उसको आँखों में देखने में दिक्कत है, या कहीं कान और नाक से ब्लीडिंग हुई है ना, और वॉमिटिंग कर रहा है, इन सब कंडीशन में ले जाना अति आवश्यक होता है। बाकी अगर छोटा मोटा चोट है, गिर गया, छोटा सा उपचार है ना, तो वो अपने घर पे भी हम बैंडेड लगा के तो करते ही हैं इलाज।
1: और ऐसी कौन सी गलती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जब तक हम बाय द टाइम उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर जाएं?
0: किस टाइप की इंजरी में, अगर जैसे हम आपसे
1: जैसे कि एक्सीडेंट हो गया है, टक्कर हो गई है, कुछ भी है, मतलब हम बाय द टाइम लेके जाते हैं, तो कई बार कुछ ऐसी चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए।
0: जैसे कि वही बताया कि हमें ये इंजरी पे, इंजरी टू इंजरी डिपेंड करता है हमारा पेशेंट की, जो सबसे पहले जनरल कंडीशन जिसे GCS हम लोग मेडिकल उसमें कहते हैं कि वो हमें देखना चाहिए कि वो होश में है कि नहीं है, होश में है, बातें कर रहा है बिल्कुल, अगर कंफर्टेबल है, सांस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्लीडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है हम अपने घर जा सकते हैं, जो बताया डॉक्टर साहब ने कि छोटी। अगर हमारे पास इससे थोड़ी गंभीरता हालत में जो बेहोश हो गया, सांस में दिक्कत हो रही है, ये सब चीज़, तो हमें उसको, अगर सपोज रोड साइड एक्सीडेंट है, जो बताया गया कि हमें बिल्कुल इस हेड को मतलब पोजीशन टिल्ट करके रखना चाहिए, सर्वाइकल स्पाइन या स्पाइन इंजरी, उसको बिल्कुल स्टेबलाइज, इमोबिलाइज जिसे कहते हैं, उसको मूव नहीं कराना चाहिए। बोनी फ्रैक्चर है, कभी कभी क्या होता है कि बोन अगर दिख रहा है, बोनी फ्रैक्चर है, हड्डी टूट गई, सपोज पैर की हड्डी टूटी है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, बोन कभी कभी देखा होगा बाहर निकल आती है स्किन, उसको अंदर करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उसको बस एक रैप कर दिया हमने ब्लीडिंग रोकने के लिए, और जब अस्पताल जाएंगे तो वहां देंगे। इससे क्या होगा कि अगर हमने अंदर करने की कोशिश की उसको, तो उसमें हमारे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं कभी कभी।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो,
3: कौन काम
1: है? हेलो, शायद लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही है। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर। हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342108020 2342108020। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन करें तो 011 लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर, तो अगर सिर पर चोट लग जाती है, कोई भी एक्सीडेंट है या कहीं पर भी हो सकता है व्यक्ति, अगर सिर पर चोट लग जाती है तो कौन कौन से संकेत हैं जो हमें गंभीर माने जाते हैं?
2: हाँ जी, मैंने अभी बताया था अभी थोड़ा देर पहले, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि हेड इंजरी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऊपर से पता नहीं चल रहा है लेकिन अंदर इंजरी हो रखी है, कंकशन या काउंटर कूप इंजरी होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखने पड़ते हैं जिससे हमें थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि नहीं, इसको अंदरूनी चोट है। और जो बाहर की चोट होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि या तो ब्लीडिंग हो रहा है वो दिख जाता है, और नहीं तो अगर कई बार क्योंकि बालों की वजह से स्वेलिंग वगैरह पता नहीं चलता है, तो उनको अगर आप हाथ से फील करेंगे तो आपको स्वेलिंग का मालूम पड़ जाता है ऐसे कंडीशन में कि कहाँ पे स्वेलिंग है। दिखता नहीं है लेकिन फील हो जाता है हाथों से। और जहाँ अंदरूनी चोट की बात है, तो सबसे पहले तो अगर वो कॉन्शियस है, बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं, या फिर तुरंत बिल्कुल अनकॉन्शियस है, तो अगर तुरंत अनकॉन्शियस है तो मतलब कुछ ज़्यादा इंजरी हो सकती है अंदर। दूसरी बात है कि नाक कान से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या पानी जैसा जिस

0: जिसको CSF कहते हैं, वो लीक कर रहा हो, नाक से लगातार लीक कर रहा हो या ब्लीडिंग आ रही हो, तो ये भी एक संकेत है कि अंदर फ्रैक्चर हो गया है, कोई एक जो बोन होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है, उसके कंडीशन से ही ऐसा होता है। तीसरा है कि आपका अगर वो आँखों में देखने में उसको दिक्कत है, ब्लरिंग ऑफ विजन जिसको कहते हैं, या बोलने में दिक्कत है उसको, स्लरिंग हो रही है स्पीच की, या मुंह टेढ़ा हो गया है ना, मुंह एक तरफ हो गया है मुंह, और या फिर उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, या फिर नेक में उसको बहुत सीवियर पेन है ना, हेडेक हो रहा है, या फिर वॉमिटिंग हो रही है। अच्छा, इसमें दो तरह की वॉमिटिंग होती है, कि नौजिया के साथ है कि नहीं, तो अगर जैसे बात करते करते वॉमिटिंग कर दिया उसने, है ना, तो वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं इसको। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि रेज्ड इंटरक्रेनल टेंशन है, और उसके वजह से जो पेशेंट है वो, और जैसे कि GCS हम लोग असेस करते ही हैं, है ना, उसमें मोटर रिस्पांस होता है, वर्बल रिस्पांस होता है, आई ओपनिंग होती है, आई कैसा है ना, तो ये सब हम पीपल्स भी अगर आप देखें, एक पीपल बड़ा है एक छोटा है, तो वो भी, या दोनों ही बिल्कुल पिन पॉइंट पीपल हैं, है ना, तो पॉन्टाइन हेमरेज का वो होता है ना, या फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है वो भी पॉन्टाइन हेमरेज, या सांस बहुत तेज लिया जा रहा है ये भी पॉन्टाइन हेमरेज, यानी कि ब्लीडिंग है ब्रेन स्टेम में। तो बहुत सारे ये सारे सिम्टम्स होते हैं या साइंस होते हैं, जिसको हम पहचान लें तो हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रेन में इंजरी हुई है।
1: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हेलो हेलो हेलो, शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई है। तो जैसे आपने अभी हैंड इंजरी की बात करी, तो कई बार होता है कि हम चोट लगी अगर सिर पर, अंदरूनी चोट है, हमें लगता है ठीक है, लेकिन उसका क्या असर कई बार कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद भी आता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि आप बेहोश हुए और एकदम से आप थोड़ी देर बाद बिल्कुल होश में आ गए और आप बातचीत कर रहे हैं, आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया। इसको एपिडूरल या एक्स्ट्राडूरल हेमरेज कंडीशन में लूसिड इंटरवल हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एकदम से प्रेशर बढ़ गया, मान लो एक आर्टरी होती है मिडिल मेनिंजल आर्टरी होती है, उसका ब्लीडिंग हुआ, आपको चोट लगी या वैसे भी, तो वो ब्लीडिंग से क्या हुआ, एकदम से प्रेशर बढ़ा आपका, आप अनकॉन्शियस हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या ब्रेन एडजस्ट करता है तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं, तो आप बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये लूसिड इंटरवल हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कुछ ठीक है, और पेशेंट को अगर अनकॉन्शियस कभी भी हुआ है तो उसे ज़रूर हमें हॉस्पिटल ले जाना, क्योंकि फिर वो थोड़ी देर बाद और ज़्यादा मतलब डीप कोमा में जाने का उसका वो रहता है। और कई बार क्या होता है, जैसे स्ट्रोक होता है कुछ लोगों को, जिसमें हम दो तरह के स्ट्रोक होता है, एक होता है जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में, एक होता है जिसमें कि नस जो आपकी जो ध्वनि है उसमें ब्लड रुक गया, कोई खून का चकत्ता आ गया तो आगे ब्लड नहीं जा रहा है, उतना एरिया ब्रेन का डैमेज हो गया। तो उसमें क्या होता है, जो वो पेशेंट जब इस कंडीशन में, जिसको इन्फार्क्शन कहते हैं हम, जो स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है कि उस वक्त सूजन नहीं आती है ब्रेन में, एक दो दिन बाद सूजन आती है। तो जब सूजन आएगी ब्रेन में तो फिर बेहोशी की हालत में पेशेंट चला जाता है, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम जाता है, जब उसको वीकनेस है, एक तरफ मुंह टेढ़ा हो गया, एक तरफ एक हाथ एक पैर नहीं काम कर रहा, उस वक्त तो वो कॉन्शियस रहता है, लेकिन क्या होता है कि दो दिन बाद दूसरे दिन वो कोमा में चला जाता है या ऑल्टर्ड सेंसोरी, मतलब होश में नहीं रहता। तो मरीज के जो रिलेटिव्स होते हैं वो कहते हैं कि हम तो जब लेके आए थे तो वो बिल्कुल कॉन्शियस थे और बातचीत कर रहे थे, और अभी ये, तो ये चीज़ हमें उनको एक्सप्लेन करना होता है, अगर स्पेशली अगर बहुत बड़ा एरिया ब्रेन का है जो डैमेज हो गया है, उसको इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड उसको नहीं जा रहा है, जितना बड़ा एरिया डैमेज होगा उतना ज़्यादा सूजन होगी ब्रेन में, और सूजन क्या होता है वो पहले दिन नहीं आएगी, फर्स्ट डे सेकंड डे आती है, तो ऐसे कंडीशन में सेकंड डे में वो अनकॉन्शियस होने के चांसेस रहते हैं, कोमा में भी जाने के चांसेस रहते हैं, तो वो हमें पहले से उनको बता के रखना पड़ता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
2: मेरा नाम सना है, मैं मेरठ से बोल रही हूँ
1: जी, बताइए क्या प्रश्न है।
2: ये है कि अगर रात को सोते सोते किसी के हाथ या पैर अचानक से सुन हो जाते हैं तो उन्हें कैसे फटाफट मेडिकेशन करना चाहिए, कैसे फटाफट फर्स्ट एड करना चाहिए घर पर?
3: देखिए, जो आपने बताया कि अगर हाथ पैर एक साइड का सुन हो रहा है, अगर है ना, या दोनों साइड के सुन हो रहे हैं, इस पर डिपेंड, अगर हमें एक साइड का
2: हाथ सुन हो जाता है, कभी दूसरी साइड का सुन हो जाता है,
3: नहीं तो आपका अगर

0: सपोज एक साइड का हाथ पैर सुन हो रहा है सोते सोते, है ना, कुछ अगर अगर एज कितनी है उस पर डिपेंड करता है, नहीं तो आपको इमिडिएटली जो है अस्पताल लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे जिसे हम या तो TIA भी कह सकते हैं या ब्रेन में इन्फार्क्ट इन्फार्क्शन की जो प्रॉब्लम हो वो हो सकती है कभी कभी, ठीक है।
1: इसमें एक चीज़ और है कि क्या आप हाथ जो है अपना सर के नीचे लगा के सोते हैं? पोजीशन भी कई बार मैटर करता है, जैसे कुछ लोग तकिया नहीं लगाते हैं, अपना जो फोल्ड करके हाथ ना सर के नीचे तकिया बना करके उसको सोते हैं। ऐसे कंडीशन में हाथों में सूजन आ सकती है, सुनपन हो सकता है, लेकिन पैरों में सुनपन नहीं होगा ऐसे में। तो अगर आप ऐसे सोते हैं तो इस तरह से ना सोएं, तकिया और बहुत बड़ा मोटा तकिया भी ना लगाएं, उससे भी दिक्कत आ सकती है, नेक में पेन हो सकता है। बिल्कुल मीडियम साइज का जो तकिया होता है वो लगाएं।
2: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं डॉक्टर साहब, अगर गले में कुछ फंस जाए तो फर्स्ट एड में क्या करें? ये लिखते हैं प्रकाश रोहिणी दिल्ली से।
0: अगर गले में कुछ फंस जाता है, पहले तो हमें देख लेना जानना चाहिए कि क्या चीज़ फंसा हुआ है उसको, है ना। उसके लिए हमें इसे हेमलिक मैन्यूवर कहलाते हैं। इसमें पेशेंट जो भी जिसके गले में जो चीज़ फंसी हुई है उसके एक व्यक्ति को पीछे जाके उस पर उस व्यक्ति को आगे और आगे की तरफ लीनिंग फॉरवर्ड जिसे कहते हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड करके उसको झुका के रखना चाहिए, और जो पीछे वाला व्यक्ति है उसको है उसको एक अपने हाथ को हाथ में फंसा के उसके जो जस्ट हमारा जो नेवल है नेवल के ऊपर और बोनी उसके प्रोमिनेंसी के बीच में एब्डोमेन पे रखना चाहिए, और इसमें जस्ट थ्रस्ट देना चाहिए, इसको आगे की झुका के 4-5 बार उसको थ्रस्ट देना चाहिए और आगे की झुका के, जिससे कि उसके मुंह में जो चीज़ है थ्रस्ट देंगे तो वो पार्टिकल हो सकता है उसको निकल जाए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए इसको, ठीक है। होपफुली
1: ये खासकर चीज़ें बच्चों में खासकर होता है, जैसे बच्चे कोई कॉइन ले रखा है या कोई आजकल जो कैंडी आती है जो हार्ड कैंडी शुगर कैंडी होती है या कंचे भी बच्चे मुँह में चबा रहे होते हैं, तो वो कई बार भागने दौड़े या एकदम से बोले तो या खेलते खेलते में वो अंदर गले में अटक जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वो हमें पता कैसे चलेगा? जब वो बात नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, सांस लेने में उसको दिक्कत आएगी और खांस भी नहीं पा रहा है वो, है ना, और मूर्छित होने के कगार पे है। ऐसे कंडीशन में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें पीछे जा करके उसके पेट में थ्रस्ट देना है, वो आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं उसका एक्चुअल पीछे जाके किस तरह से उसको डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट आपका नीचे से ऊपर होना चाहिए, है ना, और अंदर की तरफ। तो ये डायरेक्शन होता है जो आपके नाभि होती है उसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप एक फिस्ट बना करके इस तरह से और उसको थ्रस्ट पीछे से आप करते हैं ताकि जो भी चीज़ उसने लिया है वो बाहर आ जाए। या फिर कई बार क्या होता है इससे नहीं होता है तो आप पीछे भी उसके पीठ पे भी मार सकते हैं, गले के जस्ट नीचे एरिया में भी आप मार सकते हैं, तो उससे भी वो बच्चा निकाल सकता है।
2: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो,
2: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: जी, मैं IP पांडे बोल रहा हूँ, मेहरौली दिल्ली से।
2: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: अच्छा, डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा।
0: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, पूछना है कि जैसे जनरली रेगुलर काम करते हो या नेल काटते हो या कभी बाइक चलाते हुए कभी गिर गया, थोड़ा सा माइनर चोट लग गया, इंजरी हो गई, हल्का कट हो गया, उस समय हमने डिटॉल लगा लिया, तो क्या हमें पूछना है कि बार बार वो टेटनेस का इंजेक्शन लेना जरूरी होता है क्या? टेटनेस वाला जो इंजेक्शन आता है उसको लेना जरूरी है या डिटॉल वगैरह से धो लिया, फ्रेश वाटर से धो लिया तो काम कर जाएगा, मतलब उसके बाद कुछ ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत नहीं है?
2: जी डॉक्टर साहब।
1: हाँ देखिए, इसमें क्या है कि बार बार टेटनस का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है अगर आपने पूरा टेटनस का कोर्स नहीं लिया है। तो ये हमेशा याद रखिए, जो टेटनस के जो स्पोर्स होते हैं वो यूबिक्विटस होते हैं, यानी कि पूरे हर जगह हैं, मतलब हर चीज़ पे हैं टेटनस के स्पोर्स, ऐसा नहीं है किसी चीज़ में, और ख़ास करके जो मिट्टी से सना जैसे चोट होता है बाइक से गिर गए, तो ऐसे कंडीशन में प्रिकॉशनरी आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना

0: तो फिर आपको ये बार बार, अगर आपको ऐसा कोई काम है जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली इंजरी हो रही है, मान लो आपका जॉब ऐसा नेचर है कि कुछ ना कुछ चोट लगता ही रहता है, तो ऐसे में टेटनस का पूरा कोर्स ले ले तो बार बार आपको टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चों को खेलते खेलते लग जाती है और इंजरीज की भी बात कर रहे थे, तो स्पोर्ट्स इंजरीज में कौन कौन सी इंजरीज हैं जो सबसे कॉमन होती है और उस टाइम पे हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए स्पोर्ट्स इंजरीज में?
0: देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे कॉमन, अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग होता है, जैसे कि आपके बैडमिंटन में है वो ट्विस्टिंग इंजरी बहुत होती है, उसमें स्ट्रेचिंग लोगों को करना पड़ता है, तो नी का ट्विस्ट हो जाना, उसमें आपके लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस हैं, वो उसकी इंजरी बहुत कॉमन है, एंकल स्प्रेन काफ़ी कॉमन है। इसी तरह क्रिकेट की बात करें तो उसमें बॉल कहीं पे भी लग सकता है आपको, है ना, हाथों में, खास करके जब कैचिंग करते हैं तो उसमें कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है, और अगर आप बहुत पास फील्डिंग कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट बॉल लग गई तो कई बार वो भी, अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो सर पे चोट लग सकती है, कहीं पे भी चोट लग सकती है। जैसे मेरे ख्याल से मिस्टर लांबा जी थे जिनको सर पे चोट लगी थी और उनको डेथ भी हो गई थी, तो ऐसे कंडीशन में इंजरी बहुत जानलेवा भी हो सकती हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जैसे रग्बी है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है। जो एथलेटिक्स स्पोर्ट है उसमें खास करके जैसे कि हार्ट की समस्या कुछ लोगों को हो जाती है, HOCM कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एथलेटिक्स करते हैं उनका हार्ट में कई बार हमने देखा है फुटबॉल में भी कि सडन कार्डियक डेथ, वो फील्ड पे ही वो डेथ हो जाना, तो ऐसे कंडीशन में HOCM जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन होती है, तो वो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनको ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो वो एक्चुअली जब आप पीरियोडिक चेकअप कराते हैं तो वो चीज़ें सामने आती है, ECG में भी डायग्नोस हो सकता है या इको 2D इको करके हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग में अलग इंजरीज हैं, ड्राउनिंग के हो सकते हैं केसेस या अलग कोई तरह की इंजरीज हैं, तो हर तरह के स्पोर्ट्स में अलग तरह की इंजरीज हो सकती है।
1: तो इन सब में अगर देखा जाए तो क्या कुछ ऐसे कॉमन फर्स्ट एड हैं जो हम दे सकते हो?
0: हाँ नहीं, वो तो इंजरी पे डिपेंड करेगा किस तरह की इंजरी है, ज़्यादातर चोट लगने की ही इंजरी होती है, और जैसे कि कईयों में जैसे एथलेटिक्स जो होते हैं, हीट स्ट्रोक के आजकल केसेस बहुत आ रहे हैं हमारे पास, गर्मी में भी जो एथलेटिक जो प्रोफेशनल एथलेटिक्स होते हैं उनको तो एक्सरसाइज करना ही करना है ना, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, तो वो गर्मी में भी एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन है, तो वो कई बार क्या हो हीट स्ट्रोक के केसेस आते हैं, इस तरह के मसल स्प्रेन के केसेस आते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं या फिर सिनकपी, बेहोश हो जाते हैं वो एकदम से ना, क्योंकि वाटर लेवल उनके बॉडी में कम हो जाता है, सोडियम लेवल कम हो जाता है बॉडी में, या बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन होती है जिसमें हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें कि जो हाइपोथैलेमस है हमारे बॉडी में, जो ब्रेन में है एक कंडीशन है, वहाँ पर थर्मोस्टैट होता है, वो थर्मोस्टैट काम करना बंद कर देता है। जब वो थर्मोस्टैट जो होता है आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है पूरे बॉडी के, जब वही खराब हो जाता है तो टेम्परेचर अनप्रेसिडेंटेड बढ़ने लग जाता है और वो 106, 107, 108, इवन 109 तक भी चला जाता है और आदमी जो है वो बेहोश होकर के आता है। ऐसे इसी को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, और उसमें स्वेटिंग आपकी बंद हो जाती है क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम होता है कि वो हीट को लॉस करना स्वेटिंग के माध्यम से, है ना, तो जब वही खराब हो गया तो स्वेटिंग बंद हो जाती है, तो ऐसे में फिर टेम्परेचर बॉडी का बहुत तेज राइज करता है। आजकल मेरे ख्याल से 2024 में बहुत बड़ा दो दिन का 17 और 18 जून में दो दिन में बहुत सारे केसेस हमारे पास आए थे और ज़्यादातर ब्रॉड डेड केसेस थे उसमें 2024 में। 25 में इतना सिवियर हीट स्ट्रोक नहीं आया, केसेस नहीं आए, 26 में हमारे पास एक केस आया था, 25 में भी एक केस आया था।
1: तो प्रिकॉशन के तौर पे हमें क्या करना चाहिए कि जिससे ये कंडीशन तक हम ना पहुंचे?
0: यस, इसमें एक तो हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है, दूसरा है कि सिर्फ पानी ना पिए, है ना, क्योंकि आपको आपके स्वेटिंग में सोडियम भी लॉस हो रहा है, तो सोडियम यानी कि सॉल्ट लेना ज़रूरी है, और जब भी एक्सरसाइज करें तो छाएँ में यानी कि अर्ली मॉर्निंग करें या फिर धूप जब निकल जाए तब करें, खास करके जो लोग जैसे पुलिसमैन है या फिर कोई वेंडर्स हैं जो हॉकर्स स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं जो मजबूर हैं गर्मी में, तो वो उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई 12 बजे से 2 से लेकर 3-4 बजे तक ये जो बहुत तेज़ धूप पड़ती है उसमें वो छाए में रहें, और अपने आप को हाइड्रेट

0: हाइड्रेशन करते रहें। ये अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे, और कपड़ों का भी इसमें होता है कि कॉटन के कपड़े, लाइट कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़ों से इवेपोरेशन नहीं होता है। जो कॉटन के कपड़े होते हैं उससे आपका इवेपोरेशन अच्छा होता है और सोखता भी है वो स्वेट को। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं गीत।

0: हम बात करें फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर, तो डॉक्टर संजय, जैसे कि अभी हम आपने बताया था कि हीट स्ट्रोक में हमें खास ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हीट स्ट्रोक में अक्सर देखा जाता है नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है
1: जी,
0: तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए?
1: जी, नोज ब्लीडिंग यूजली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नाक सूखने की वजह से नोज ब्लीडिंग होती है, या फिर कई जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो उसको बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो नोज ब्लीडिंग के जरिए उस प्रेशर को कम कर देता है, जो हाई ब्लड प्रेशर एक तरह से सेफ्टी वेल्व की तरह काम करता है। कईयों में ऐसा नहीं हो पाता तो उनको सीधा ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो अनलकी लोग होते हैं, लेकिन जो लकी लोग होते हैं उनका नेजल ब्लीड के वजह से वो प्रेशर आपका जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो ब्रेन हेमरेज से बच जाते हैं और उनको एक वार्निंग भी मिल जाती है। तो एनी हाउ दोनों केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कई बार कुछ लोगों को जैसे रनिंग नोज होता है या कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं नाक सुखा जिससे, तो उससे भी वो नोज ब्लीडिंग होती है, या फिर नोज पिकिंग बहुत लोग करते हैं, बार बार नोज पिकिंग कर रहे हैं तो उससे भी, तो ये सब कंडीशन में नोज ब्लीडिंग होती है, तो उसमें घबराना नहीं है, नोज पिंच करना है अच्छी तरह से और बीच बीच में सांस मुंह से सांस लेना है, ऐसे नहीं कि बीच में आपने पिंच कर दिया तो उसको बीच में छोड़ना है ना, उसको छोड़ना नहीं है, मुंह से आप आराम से सांस लेते रहे और नोज को अच्छी तरह से दबा के एक प्रेशर मेंटेन करके करते हुए उसको आप हॉस्पिटल लाएं, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है एंटीरियर नोज ब्लीड है, आगे का नोज ब्लीड है या पोस्टीरियर नोज ब्लीड है, वो ENT सर्जन देखते हैं और फिर वो उसके हिसाब से अगर कंट्रोल नहीं होता है, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर लोअर करने की मेडिसिन देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट नेजल ब्लीड हो रहा है तो उसमें फिर वो पैकिंग भी करते हैं, नेजल पैकिंग जो होता है।
0: तो कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जो हम कर सकते हो?
1: घरेलू
0: या कोई ट्रेवल कर रहा हूँ वहाँ पर हो जाए तो क्या करें?
1: नोज पिंचिंग से ही ज़्यादातर वो ठीक हो जाता है, उसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर तक आप नोज पिंच करके रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर माइनर ब्लीडिंग होते हैं, उसमें कुछ घबराने वाली बात होती नहीं है।
0: एक और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो देखी जाती है वो हार्ट की होती है, कि कई बार होता है कि हार्ट में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, कई बार लगता है ऐसे ही हो गया होगा, कुछ गलत खा लिया होगा उसकी वजह से हो रहा हो, या कई बार हार्ट अटैक की स्टार्टिंग सिचुएशन होती है उसकी वजह से भी होता है। तो डॉक्टर सचिन आप बताइए, अगर हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन हो तो उसमें हम इमिडिएटली फर्स्ट एड क्या दें?
2: अगर हार्ट अटैक के हमें साइन सिम्टम मिल रहा है, सपोज़ किसी व्यक्ति को कि हार्ट में लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो रहा है या लेफ्ट हैंड में उसका दर्द जा रहा है, या कभी कभी क्या होता है कि हार्ट अटैक के जो साइन सिम्टम होते हैं कि वो गर्दन में भी पेन होता है, या किसी वेरी रेयर केसेस में एपिगैस्ट्रिक जैसे कहते हैं नाभि के ऊपर उसमें भी पेन हो सकता है, इन चीज़ों में हमें थोड़ा सस्पेक्ट करके रखना चाहिए कि या उसको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेन की जो सीवियरिटी है वो इस तरीके की है, निचोड़ने वाली, छाती को एकदम ऐसा लग रहा है कि हमें निचोड़ जाएगा या बैक साइड की तरफ भी जा रहा है, इमीडिएटली हमें एक किसी छोटे सेंटर अगर पास में जो भी एक ECG करा के देख लेना चाहिए, अगर ECG में कुछ भी साइन चेंजेस दिख रहे हैं इमीडिएटली हमें जो है अस्पताल पहुँचना चाहिए, वहाँ पर उनके लिए बेसिकली वही ब्लड थिनर, अगर घर में सपोज कोई व्यक्ति ब्लड थिनर नहीं लेता या कुछ है सोडियम सॉर्बिटेट रखी हुई है और आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक के साइन सिम्टम आप उससे पुख्ता है कि है, तो उसमें हमें ले लेना चाहिए और इमिडिएटली जो है अस्पताल की तरफ रुख करना चाहिए हमें जो है इसमें
1: कई बार ऐसा भी होता है कि ना सिम्टम्स जैसे नॉर्मल डॉक्टर साहब ने बताया कि ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो चेस्ट में पेन हुआ है ना, कई बार क्या होता है जैसे डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है तो उसमें ये सब सिम्टम्स नहीं आते, कई बार उनको सिर्फ पसीना आया या घबराहट हुआ या कई बार एटिपिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि आपको लेफ्ट हाथ में पेन के जगह राइट हाथ में पेन हो रहा है ना, या दोनों हाथ में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, जॉ में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है ना, तो इस तरह के एटिपिकल सिम्टम्स हैं, तो या फिर आपको बहुत ज़्यादा सिवियर वीकनेस हो रही है ना, ऐसे एकदम से जैसे कि मतलब गिरा जा रहा है शरीर है ना, अचानक हो गया ये चीज है ना, कई बार जैसे आपने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी इमोशनल स्ट्रेसर जो होता है वो आपने सुना, और या किसी का कोई भी ऐसा जो इमोशनल स्ट्रेस था तो वो आपने सुना और उसके बाद से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लिथार्जी और गिरा हुआ शरीर, फटीग आ रहा है, तो तुरंत आपको इसमें इसी

0: जी कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा जाने का समय हो रहा है, लेकिन दो तीन चीजें मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं तक पहुंच जाए, तो मैं शॉर्ट में जल्दी में जानना चाहूंगी, अगर किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगे तो वो फर्स्ट एड क्या ले?
0: देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे आपका करंट पास होता है, और एक एग्जिट पॉइंट होता है ना, जहाँ से आपका वो निकल के बाहर जाता है। इसके बीच में जो होती है, जो करंट होता है, वो ट्रैवल करता है आपके नसों के जरिए, और वो डिपेंड करता है कि आपका करंट कितना हाई वोल्टेज का है। अगर बहुत हाई वोल्टेज का है, ट्रांसफार्मर से या हाई टेंशन वायर से हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एग्जिट वुंड भी और एंट्री वुंड भी ज़्यादा होता है, और इंजरी भी ज़्यादा होती है, नर्व्स भी इंजरी होती है, मसल भी इंजरी होती है। तो अंदरूनी आपको बाहर से नज़र नहीं आएगा, है ना, अंदर का चोट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टिगेशन होगा और उसका उपचार होता है।
1: और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, अगर किसी के कान में कीड़ा चला जाता है, कई बार होता है कि सोते हुए चला गया, वैसे चला गया, तो वो क्या करें?
0: हाँ, उसमें क्या करना है कि एक तो यह है कि वो चल रहा है तो आपको खुड़खुड़ आवाज़ आती है, तो उसमें क्या करना है, उस कान में कोई भी तेल हो, मिनरल ऑयल हो आपके पास, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल है या कोई भी तेल है, उसके कान में आप डाल देंगे एक तरफ, दो चार पाँच मिनट के लिए उसको उस तरफ नीचे ऊपर की तरफ उस कान को रखें, ताकि वो जो वो है उसमें मर जाए या वो बाहर आ जाए।
1: और एक मैसेज भी हमारे पास ये लिखते हैं, नमस्कार सर, मैं शबनम हूँ, बीके दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, मेरी बेटी भरतनाट्यम नृत्यांगना है, वो हमेशा अभ्यास करती रहती है, ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
2: ऐसे में अगर वो भरतनाट्यम करती है, उसकी मसल्स वर्किंग ज़्यादा है, उसको अपने बेसिकली हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम पोटेशियम, जैसे हम लोग ORS वगैरह, इसको जरूर रेगुलर लेते रहना चाहिए, ताकि जो उसकी मसल्स वीकनेस, क्योंकि इतना वर्किंग है, तो वो कम हो जाएगी और इसमें फ़र्क पड़ेगा उसके लिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे फिट रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, और उनके लिए फर्स्ट एड सजेशन आपके लिए क्या होगी?
0: सबसे पहले तो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ना आप हेलमेट जरूर पहने, है ना, हेलमेट कई, हाँ, तो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है।
1: तो दोस्तों, आज की बातचीत से ये सीख मिलती है कि फर्स्ट एड सिर्फ इलाज की शुरुआत नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने की पहली कोशिश है। आज हम कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर सचिन महेश्वरी, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
1: तो दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, हम आपके लिए लेकर आएंगे फिर एक नया विषय और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
3: अभी आप आकाश

नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में अब संपन्न हुई। झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की जांच का भी आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चल रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के अभियान में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना का चरण पूरा हो गया है। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती

करती हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्ष 2002 को आधार वर्ष निश्चित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। केरलम में आज से विजिंजम समुद्री बंदरगाह से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशान इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया। काठमांडू में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू करा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया। वहीं FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले जा रहे मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गरे का मुकाबला कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से होगा। और ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चार बज चुके हैं बाय द स्टूडियो क्लॉक। वक्त हो चुका है 4:05 का और मैं हूं ज्योतिका। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन, जहां बात होती है करियर की, चॉइसेस की और इस जर्नी की, जिसका मैप शायद हम सब के पास थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट सा रहता है। आज एक इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। करियर में सक्सेसफुल होने की करेक्ट एज क्या होती है आखिर? 22 में फर्स्ट जॉब, 25 तक अच्छी सैलरी, या 30 तक कोई अच्छी मैनेजर वाली पोजीशन मिल जाना? और अगर ये सब नहीं हुआ तो क्या हम लेट हैं? पता नहीं किसने ये इमेजिनरी टाइमलाइन बनाई है ना, लेकिन हम में से बहुत लोग उसके अगेंस्ट अपनी प्रोग्रेस मेजर करते रहते हैं। किसी दोस्त का प्रमोशन हो गया, किसी ने स्टार्टअप शुरू कर दिया, कोई अब्रॉड शिफ्ट हो गया, और हम सोचते हैं यार मैं कहां रह गया। लेकिन करियर कोई 100 मीटर की दौड़ तो नहीं है जहां सबकी स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन सेम हो, है ना? किसी का रास्ता सीधा है, किसी का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, और किसी को अपना एक्चुअल रास्ता मिलता ही थोड़ा लेट है। तो आज अल्फा जैन में बात इसी की कि करियर में कोई परफेक्ट टाइमलाइन क्यों नहीं होती है। और शुरुआत एक ऐसे गाने के साथ जो एक पूरी जनरेशन को अपनी जर्नी याद दिलाता है। स्टे ट्यून्ड विद मी राइट हियर।

जो भी हो बस टेंशन मत लेना आप, है ना। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर और मैं हूं ज्योतिका। स्कूल में ना एक सवाल कितनी कॉन्फिडेंस से पूछा जाता है आज जाके रियलाइज होता है। बड़े होकर आप क्या बनोगे? जैसे 16-17 की एज में हमें पूरी लाइफ का आंसर पता होना चाहिए। देखो रियलिटी ये है कि बहुत से एडल्ट्स को भी अपनी करियर डायरेक्शन समझने में वक्त लगता है। आपने ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में की और फर्स्ट जॉब कुछ और मिल गई। काम करते हुए रियलाइज हुआ कि इंटरेस्ट तो मेरा तीसरी चीज में है, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। फर्स्ट करियर चॉइस कोई लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बात बनी तो बनी, नहीं बनी तो कोई गल नहीं। कभी कभी आपको ये डिस्कवर करने के लिए कि आपको क्या करना है, पहले ये डिस्कवर करना पड़ता है कि आपको क्या नहीं करना है। सो अगर

कनेक्शन अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। एक्सपेरिमेंट कीजिए, इंटर्नशिप्स कीजिए, लोगों से बात कीजिए, डिफरेंट रोल्स एक्सप्लोर कीजिए। देखो, क्लैरिटी अक्सर चेयर पर बैठकर सोचते रहने से तो नहीं आती है, चलते चलते आती है।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट। नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा।

0: मथुरा का आनंद, सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
0: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।

वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल एड ब्रेक. आप सुन रहे हैं अल्फा जन विद मी ज्योतिका. चलिए थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होते हैं, हो जाए क्या? अपनी फर्स्ट जॉब को याद करिए, पहला आईडी कार्ड, पहली ऑफिशियल ईमेल आईडी, ऑफिस में पहला दिन और वो कंफ्यूजन कि हाय अब करना क्या है. और फिर आती है अपनी फर्स्ट सैलरी. अमाउंट चाहे जो भी रहा हो, बैंक अकाउंट में जब वो पहली सैलरी क्रेडिट होने की फीलिंग होती है ना, वो सबसे अलग होती है. मे बी आपने मम्मी पापा के लिए कुछ लिया हो, फ्रेंड्स को ट्रीट दी हो, या बिना किसी रीजन के अकाउंट को बार बार चेक किया हो. फर्स्ट जॉब परफेक्ट तो बहुत रेयरली होती है. सैलरी कम हो सकती है या फिर आपके बॉस बड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, रोल भी शायद ड्रीम वाला रोल ना हो. लेकिन वो हमें एक चीज जरूर सिखाता है, प्रोफेशनल दुनिया एक्चुअली चलती कैसे है. आप जी हजूरी वाले हैं या अपनी बात कहने वालों में से हैं, टाइम पर कब आते हैं या बस वो 5 मिनट की नींद के चक्कर में हर बार लेट हो जाते हैं, पंक्चुअलिटी सीखते हैं, रिस्पेक्ट कमाते हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको आपकी फर्स्ट जॉब सिखाती है. सो अगर आप अपनी अभी फर्स्ट जॉब में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, याद रखिएगा ये आपकी पूरी करियर स्टोरी थोड़ी है, बस अभी तो ये पहला चैप्टर है जनाब.

वेलकम बैक टू अल्फा जेन, और हम आज बात कर रहे हैं करियर की। जी हाँ, इंडियन करियर कॉन्वर्सेशंस में एक जो ये वर्ड होता है ना, बड़ा पावरफुल होता है, उस वर्ड का नाम है पैकेज। समझ गए ना अब आप, उसका पैकेज कितना है? ये सवाल जब भी कानों में आता है तो आपको कैसा महसूस होता है? अरे प्रॉब्लम सैलरी डिस्कस करना नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ को एब्सोल्युटली, मतलब जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है ना, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम कभी कभार ना दूसरों से रेस में लग जाते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी और की सैलरी हमारी सेल्फ वर्थ का मेजरमेंट बन जाती है। आप और आपका कॉलेज फ्रेंड सेम बैच में थे, आज वो आपसे डबल अर्न करता है, लेकिन क्या आप दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं? कभी सोचा ये बात? सेम शहर में हैं? या सेम वर्किंग आवर्स हैं? सेम प्रायोरिटीज हैं क्या? या सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी?

प्रॉबली नॉट। सैलरी करियर का ना इम्पोर्टेंट मेट्रिक तो है, लेकिन ओनली मेट्रिक नहीं है। लर्निंग, ग्रोथ, वर्क एनवायरमेंट, हेल्थ, टाइम, पर्पस, ये सब भी पैकेज का पार्ट है। बस सैलरी स्लिप पर प्रिंट जो होती है वो अच्छी भी लगती है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है। सो कंपैरिजन कीजिए, लेकिन कल वाले अपने वर्जन से कीजिएगा। और हर बार ये सोचना कि क्या मैं फेल हो गया हूं, नहीं, थोड़ा स्लो चलना फेलियर नहीं है, लेकिन अगर आप रुक गए हैं तो शायद वो फेलियर जरूर हो सकता है, तो रुकना नहीं है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर ये है अल्फा जैन और मैं हूँ ज्योतिका। करियर ग्राफ ना हम यूजुअली एक अपवर्ड एरो की तरह इमेजिन करते हैं, है ना? जॉब, उसके बाद प्रमोशन, उसके बाद फिर से एक बेटर जॉब और फिर एक और प्रमोशन। बट कभी आपने सोचा है, रियल करियर्स रेयरली लुक दैट नीट। इतना आसान नहीं होता ना। कभी हायर स्टडीज के लिए ब्रेक, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कभी रीलोकेशन, कभी हेल्थ, कभी सिंपली बस ये रियलाइज करना कि यार

बहुत हो गया, आई नीड अ ब्रेक। और ब्रेक के बाद सबसे ज्यादा जो कॉमन फियर, कॉमन थॉट सबके दिमाग में आता है वो ये है कि यार अब वापस कैसे शुरू करेंगे। बहुत आसान है, स्टार्ट स्मॉल, स्किल रिफ्रेश कीजिए, ओल्ड कॉन्टैक्ट से रिकनेक्ट करिए, इंडस्ट्री में क्या चेंज हुआ है उसको समझिए। कॉन्फिडेंस को एक दिन में वापस आने की डेडलाइन तो बिल्कुल भी मत देना आप। आपका करियर पॉज हुआ था, आपकी कैपेबिलिटी डिलीट नहीं हुई है कि अगर आप ये सोचे कि यार अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। जहां ये थॉट आ गया ना, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने करियर में थोड़ा सा कुछ नया ऐड करिए, सीवी में कोई स्किल ऐड करिए, एआई सीखिए। एआई इज द न्यू ट्रेंड हियर। समटाइम्स अ पॉज इजंट द एंड ऑफ द जर्नी, इट इज वेयर यू डिसाइड वेयर यू एक्चुअली वांट टू गो नेक्स्ट। समझे? देखो सरल भाषा में यही बात है कि हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में एक ऐसा फेज आता है जब उन्हें लगता है कि कुछ भी उनके फेवर में नहीं जा रहा है। पर वो जो फेज होता है ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी। बस इतना समझ लीजिए, ये एक नया चैप्टर है और अभी बहुत दूर जाना है आपने।

वेलकम बैक। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने मंडे मॉर्निंग अलार्म तो लगाया, फिर वो बजा भी, लेकिन दिल से एक आवाज आई कि बस मुझसे नहीं हो पा रहा। और अरे ऑब्वियसली हर बैड मंडे का सोल्यूशन रेजिग्नेशन लेटर तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी डिस्कम्फर्ट टेम्पररी भी नहीं होता। आप रियलाइज करते हैं कि जिस प्रोफेशन को चूज किया था वो अब आपको एक्साइट नहीं करता। करियर स्विच स्कैरी होता है बिकॉज आप जीरो से नहीं लेकिन एक बिगिनर बनकर दोबारा स्टार्ट करते हैं। सैलरी टेम्पररीली कम हो सकती है, लोग पूछेंगे कि इतना एक्सपीरियंस छोड़ दिया तुमने, लेकिन एक्सपीरियंस माय डियर कभी वेस्ट नहीं होता, याद रखिएगा। कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप, डीलिंग विद पीपल, बहुत कुछ आप अपने नए करियर में साथ लेकर जाते हैं, ये हमेशा याद रखना। स्टार्टिंग अगेन डजंट ऑलवेज मीन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, समटाइम्स इट मीन्स स्टार्टिंग अगेन लेकिन विद गुड एक्सपीरियंस। देखो, आपकी जर्नी किसी और की जर्नी जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी का सक्सेस 25 में आता है, किसी का 35 में, तो किसी का 45 में। देयर इज नो फिक्स्ड टाइमलाइन फॉर सक्सेस, सो अपने आप को कंपेयर करना तो प्लीज छोड़ दीजिए। बस चलते रहिए और अपने ऊपर काम करना मत छोड़िए। बस

0: नहीं, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. आप सुन रहे हैं अल्फा जेन, और अब अल्फा जेन में बात उस ईमेल की जिसे कोई रिसीव नहीं करना चाहता. समझ गए होंगे आप, है ना, जो शुरुआत ही ऐसे होती है ना उस ईमेल की, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, हाउ एवर बस आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता. इंटरव्यू अच्छा गया था, एक्सपेक्टेशंस बन गई थी, और फिर आता है वो रिजेक्शन वाला ईमेल. करियर में रिजेक्शन पर्सनल फील होता है बिकॉज हमने सिर्फ सीवी नहीं भेजी होती, एक होप भेजी होती है. लेकिन एक रिजेक्शन का मतलब आई एम नॉट गुड इनफ तो बिल्कुल नहीं होता. मे बी किसी और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा अच्छा था, मे बी रोल इंटरनली फिल हो गया हो, या मे बी टाइमिंग मैच नहीं हुई. फीडबैक अवेलेबल है तो ले लीजिए, प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट करिए, क्योंकि वहां से अगर आप फीडबैक लेंगे तो उस प्रेपरेशन का इंपॉर्टेंस समझिए. लेकिन हर क्लोज्ड डोर के बाहर बैठकर ये मत सोचिए कि अंदर जाने लायक ही नहीं था मैं. ना ना ना ना ना, यही इसी नेगेटिव थॉट से आपको बचना है. कभी कभी आंसर सिंपल सा होता है, नॉट दिस वन बट कीप मूविंग.

वेलकम बैक टू अल्फा जेन। सोशल मीडिया पर आप हमेशा एक फ्रेज देखते होंगे, सुनते होंगे, याद है आपको? फाइंड अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर फील लाइक यू आर वर्किंग। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इवन योर ड्रीम जॉब कैन हैव बोरिंग मंडेज। यार लेट्स बी प्रैक्टिकल। क्रिएटिव करियर में ईमेल्स भी होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप में अकाउंट्स भी होंगे, ड्रीम कंपनी में डेडलाइंस भी होंगी, करियर फुलफिलिंग होना चाहिए जनाब। हर सेकंड एक्साइटिंग अपने आप बनी जाता है। एक और चीज आपसे कहना चाहूंगी, आपकी जॉब को आपकी पूरी आइडेंटिटी बनने की जरूरत भी नहीं है। आपका डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है, कंपनी चेंज हो सकती है, करियर भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज और पर्सनैलिटी, वो भी आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है, उसे मत बदलने दीजिएगा। सो वर्क को इंपॉर्टेंस दीजिए, पर पूरी जिंदगी को विजिटिंग कार्ड मत बनाइए ना, कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। वो कल नहीं आएगा जनाब, आपको वक्त निकालना पड़ेगा अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं अल्फा जन। 20s में लगता है 30 तक सब फिगर आउट हो जाना चाहिए। 30 आता है और पता चलता है अच्छा किसी को तो अभी भी फिगर आउट नहीं हुआ है। किसी को फर्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी 23 में मिल जाती है, किसी को 35 में, तो किसी को 40-45 में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी। कोई रिटायरमेंट के बाद अपना पैशन प्रोफेशन बना लेता है। लेट सक्सेस नाम की चीज तभी एग्जिस्ट करती है जब हम मान लें कि सक्सेस की कोई यूनिवर्सल डेडलाइन नहीं होती। और हाँ, एक और बात, आपको थोड़ा ज्यादा वक्त लगा तो लगा, इट्स ओके। आपकी जर्नी का पर्पस किसी और को बीट करना तो नहीं है। इट इज टू इवेंचुअली रीच अ प्लेस वेयर यू कैन से हाँ, अब जो कर रहा हूं ना उसमें मुझे कुछ अपना सा लग रहा है। आप सुन रहे हैं अल्फा जन।

और इसी के साथ आज के अल्फा जेन से विदा लेने का वक्त आ गया है। आज की कॉन्वर्सेशन एंड करते हुए एक इमेज इमेजिन करिए प्लीज। एक हाईवे है, कोई आपसे आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई एग्जिट लेकर बस आपसे थोड़ा सा राइट या लेफ्ट हो गए हैं, तो कोई रास्ते में रुक गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी रोड देखने के बजाय साइड मिरर में किसी और की जर्नी देखते रहते हैं। एज आई ऑलवेज सेड, करियर में 25 के हैं, 35 के या 45 के, अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, अपने डिसीजंस को बेटर समझ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर डायरेक्शन चेंज करने की हिम्मत रखते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट लेट। प्रमोशन लेट हो सकता है, सक्सेस लेट फील हो सकती है, क्लैरिटी लेट आ सकती है, लेकिन आप लेट नहीं है। सो अपनी स्पीड पर चलिए, ब्रेक लेना हो तो ले लीजिए, रूट चेंज करना है तो ले लीजिए, बस स्टेयरिंग अपने हाथ में रखिएगा। मैं हूं ज्योतिका, आपसे इजाजत लेती हूँ। कीप लर्निंग, कीप मूविंग और अपनी जर्नी को किसी और की टाइमलाइन से मेजर मत कीजिए। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, और जाते जाते एक गाना जो शायद करियर और लाइफ दोनों के लिए परफेक्ट है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को बहुत महत्व देता है। श्री यादव ने ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए 4 ज्ञान संकल्पों का अनावरण किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए 4 नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही फैसला है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस

0: कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा नहीं करना चाहिए। केरलम में विजयंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया, जो क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने यूरोप के लिए पहले जहाज और दो कंटेनर के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अनुपस्थिति, स्थायी रूप से स्थानांतरण, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण और मृत्यु जैसे कारणों से 2,07,03,268 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अधूरे रह गए। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 40 रन बना लिए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थे थतार थुजार को हराया। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। भारत की प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 खिलाड़ियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The 12th BRICS Environment Ministers meeting concluded successfully today at Bharat Mandapam in New Delhi under India's 2026 BRICS chairship. The two-day meeting aimed to foster consensus and strengthen environmental cooperation among BRICS nations. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, presided over the meeting. Addressing the gathering, Mr. Yadav said that as chair, India remains committed to fostering open, constructive and consensus-based dialogue and greatly values the perspectives and contributions of all member countries.
2: As nations pursue their development aspirations, they are navigating an increasingly complex environmental reality. The impact of climate change, biodiversity loss and pollution, the triple planetary crisis together with growing disaster risk are affecting communities and ecosystems worldwide. These challenges are particularly significant for developing countries where environmental vulnerability is often closely intertwined with broader development priorities including poverty eradication, food security and inclusive growth.
1: The Unique Identification Authority of India, UIDAI, has achieved a major milestone in its nationwide mission mode drive for mandatory biometric updates, completing more than 2 crore biometric updates for school children across the country. The special drive, initiated in September last year, has now covered over 1,56,000 schools, enabling school children to complete their Aadhaar biometric. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused opposition parties of spreading misinformation on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill for vote bank politics. In an interview to a private news agency, he said the bill will bring transparency to foreign funding flows. He said sending the bill to a joint parliamentary committee is an excellent decision. The BJP today hit out at the Congress Party for disrespecting the national song Vande Mataram during Independence Day celebrations at the All India Congress Committee headquarters in New Delhi. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Ravi Shankar Prasad said, The Congress party should stop claiming monopoly to

0: सोते जागते उसी ख्वाब की आवाज चंदन के कानों में भी गूंजती रही। वो अपने ख्वाब आरती की पायल से लपेटता रहा और सुनता रहा।
1: एबार खुना बोले लुसु लता मंगेशकर और भूपेंद्र कंठत ए

0: आरती ऐसे ही एक किनारे पर खड़ी थी। वक्त के भंवर पैरों से लिपटे हुए थे, वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।
1: धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे ने धागे

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া শুনক হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি ৰিলে কৰা হ'ব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
2: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार

0: क्रीडा पुरस्काराः उद्घोषिताः। भारतस्य मुख्य महिला बैडमिंटन युगलं त्रिशा जौली तथा पुल्लेला गायत्री गोपीचन्दः इत्येताभ्यां सह विविध क्रीडा शाखानां अन्येभ्यः पञ्चदश उत्कृष्ट क्रीडकेभ्यः क्रीडा क्षेत्रे तेषां प्रशंसनीय कार्याय अर्जुन पुरस्कारः प्रदास्यते। भारतस्य वरिष्ठ फुटबॉल क्रीडकः यशाहाः अरुमनेयांगमः अर्जुन पुरस्कारेण विभूषितो भविष्यति। इतदतिरिच्य एथलेटिक्स प्रशिक्षकः परवीर सिंहः मुष्टामुष्टिद्वन्द्व प्रशिक्षकः छोलेलाल यादवः नेहानंद कुमार चौहानः च द्रोणाचार्य पुरस्कारेण सम्मानिताः भविष्यन्ति। तथैव आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे संस्था राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन पुरस्कारेण अलंकृता भविष्यति। एफआईएच महिला हॉकी विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां भारतीय महिला दलम अद्य सायं नीदरलैंड्स देशस्य एम्स्टेलवीन नगरस्थे वेगनर हॉकी क्रीडांगणे स्वकीय द्वितीय समूह स्तरीय द्वंद्वे दक्षिण अफ्रीका दलेन सह स्पर्धिष्यते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एषा स्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं सायं सार्धषड्वादने प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: বাতৰিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ ষ্টুডিঅৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এইবাৰ শুনাবলৈ লৈছো শতাব্দী শৰ্মাৰ কণ্ঠত আধুনিক গীত।

0: এই অনুসৰি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে 17গৰাকী ব্যক্তিক 2025 বৰ্ষৰ অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে। এইসকলৰ ভিতৰত এথলেটিক্সত তেজসীন শংকৰ, বেডমিণ্টনত তৃষা জলি আৰু পুলেলা গায়ত্ৰী গোপীচান্দ, হকীত লাল ৰামচিয়াৰী, কাবাডীত শ্ৰী সুৰজিত আৰু পূজাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ক্ৰীড়াবিদ আছে। তিনিগৰাকী বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদলৈ 2025 বৰ্ষৰ দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা আৰু আন দুগৰাকীলৈ জীৱনজোৰা সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি খতি পুনৰ এবাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত লোকসেৱা ভৱনত শিক্ষা বিভাগৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত শিক্ষা অধিকাৰ আইনকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত বিস্তৃত পৰ্যালোচনা। চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত 4.5 কোটি বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগীয়ে চিকিৎসা লাভ কৰা বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী প্ৰকাশ। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীৰ গতিবিধি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আইন শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে সান্ধ্য আইন জাৰি আৰু উজনি অসমৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকৰ সংস্থাপন তথা জীৱিকাৰ বাবে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানসন্মত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা।
1: भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया दो दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया है। विशाखापट्टनम में आज भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
2: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनकारी के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व CBI निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जन मुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर

निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने देश भर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: প্ৰিয়শ্ৰোতা, ভজনৰ অনুষ্ঠানটি আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল। খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব। ষ্টুডিঅলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিম নিশা 9:30।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
3: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्र

0: ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई है वहाँ और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई है और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: भूमध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़े विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्रीय कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9।